0: 我爱你，我爱你，我爱你。
1: 喂呢，八个爱呀对，老爱我爱我，问题就到家呀。
0: 我等你 ，Radio Tiger 爱我。
2: युहो रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ज गर्जन सस्नदै बाघसिं रेडियो टाइगर स्टुडियो टाइम अहिले बिहानको 8 बजेको छ।
3: यस टाइम चेकका साथमा
2: केपी पोलिक्लिनिक भुरिगाउँ बजार बर्दिया
4: होइन।

0: इहा से बचकला पहिलहा सावधानी अपनाए। लड्या खोलम पानी बढ़ल बा कलसे सावधान रही। एम्बुलेंस सुरक्षा निकाय स्वयं सेवगन के संपर्क विवरण तक सूची बनाई। एक चुट्टे प्रयोग के लाग झटपट झोला तैयार पारी। वो बरखक ब्यालम संक्रमण के डर त्यार हुलक ओर से पानी ढिका के पी स्वच्छता में ख्याल करी।
1: प्लान इंटरनेशनल नेपाल ओ भेरी वातावरणीय विशिष्टता समूह बी ग्रुप की साझेदारी में बर्दिया जिला में संचालन हुई रहल विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता तथा सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के लाग जारी संदेश।
2: यो हो तपाईको आफ्नै रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ज।

0: जीत पुरवाली यह साल तो निश्चिंत हो गवा गए।
1: हाँ तब परसलिया याद करो तो जू डराए लागल था, पानी जब बरसत रहा तब इतना आनंद से कहाँ बैठे मिलत रहा। सोचो तब नदी किनारे के घर पानी पड़े लागे कि जू घबराए लागत रहा।
0: हाँ तो भले सही समय पर नदी के किनारे से सुरक्षित जगह पर चल गवा।
2: बरसात के मौसम में बाढ़ के खतरा ज्यादा होत है, यही नाते बाढ़ से बचे खरती पहले से तैयारी और सावधानी अपनावा जाए। नदी नारा में पानी अगर बढ़ा है तो सतर्क हो जावा जाए। एम्बुलेंस, सुरक्षा निकाय, स्वयं सेविका सबके संपर्क करे, सूची तैयार पारा जाए। एकाएक जरूरत पड़े वाला सर सामान के झोला तैयार रखा जाए। सतवे बरसात के समय में रोग लागे जोखिम ज्यादा हो नाते पानी उबाल के पिया जाए, सर सफाई में ध्यान दिया जाए।
3: प्लान इंटरनेशनल नेपाल और भेरी वातावरणीय विशिष्टता समूह बी ग्रुप बांके के साझेदारी में बर्दिया जिला में संचालन हो रहा विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता और सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के खातिर जारी संदेश।
4: नमस्कार, तपाई अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ज। गर्जन छ सधैं, बाज्दै।